प्रोप्राइटर गम्बहादुर लकान्द्री शर्मिला लकान्द्री सन्ध्या सुनचाँदी हस्तकला उद्योग खाँचारी एक भानुचोक सङ्खुवासभा सम्पर्क 9842 36 56 31 98 070 13 265